आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुखदेव जसवाल का आपको सादर नमस्कार। चौदह जून के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का एक बार फिर सादर नमस्कार। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, सुखदेव जसवाल।

आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गाने। हम श्रद्धांजलि देंगे धन सिंह थापा, मेजर धन सिंह थापा, परमवीर चक्र सम्मानित। आज क्योंकि किसी कारण मैं कार्यक्रम लाइव यहाँ स्टूडियो में नहीं दे पा रहा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी फरमाइश नहीं ले पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो गाने आपके लिए मैं चुन कर लाया हूँ आपको पसंद आएंगे। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं RRR.org.au पे, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, या फिर आप एक फ्री ऐप, मुफ्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने चुनिंदा, अपने फेवरेट ऐप स्टोर से। ऐप का नाम है कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हों सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक।

सुनील दत्त एक ऐसे कलाकार जिनमें सिविक सेंस, कम्युनिटी के लिए दिल में जगह और देश के लिए दिल में जगह कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनकी फिल्मों में भी यही नज़र आता था। सुनील दत्त जी का यूं तो जन्म तो हुआ आजकल जो पाकिस्तान में है, लेकिन वो पाकिस्तान और भारत दोनों के बन गए। उनका जन्म हुआ 6 जून 1929 को नाका खुर्द में, जो जेलम डिस्ट्रिक्ट में है, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी परिवार जो था वो हुसैनी ब्राह्मण लैंडलॉर्ड फैमिली था, अमीर परिवार था, और सुनील दत्त जी के एक छोटे भाई राज सोमदत्त और उनकी बहन राज रानी बाली, जिनका के जिनकी मृत्यु वो केवल जब 5 साल के थे तब हो गई थी। सुनील दत्त जब 18 साल के थे तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम दंगों में हिंदुओं को मारते थे, हिंदू मुस्लिमों को मारते थे। ऐसे में सुनील दत्त जी के परिवार को एक मुस्लिम दोस्त याकूब ने बचाया और उन्हें भारत आने में मदद दी। भारत आकर वो यमुना किनारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पंजाब में बस गए। ये यमुनानगर अब हरियाणा में है। उसके बाद परिवार अमीनाबाद बाजार नेबरहुड जो लखनऊ की है वहाँ चले गए यूपी में, और तो कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो बॉम्बे आ गए और बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में पढ़ने लगे, और BEST जो आज भी BEST है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बस सर्विस, उसमें काम करने लगे और इंजीनियरिंग डिवीजन में उनको काम मिला। 1954 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की, और डायरेक्टर रमेश सहगल उनके जीवन में बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया। वो एक रेडियो कार्यक्रम पेश करने की सोच रहे थे, लिप्टन की महफिल रेडियो सिलोन पर, और फिल्म इंडस्ट्री से वो चाहते थे कोई आए, और उन्होंने चुना सुनील दत्त को। यही नहीं, उन्होंने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में सुनील दत्त जी को कास्ट भी किया एज ए हीरो, और इस फिल्म का गाना आपको मैं जल्दी ही सुनाऊंगा। लेकिन सुनील दत्त जी का चरित्र और सुनील दत्त जी की हाव भाव जो थे वो उनके इस गाने से बहुत अच्छी तरह सामने आते हैं, जो मैंने लिया है मदर इंडिया से।

कौम के लिए उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी माता जी ने कहा था पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, उसके बाद जो भी करना है करना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की बॉम्बे से और फिर उसके बाद वो रमेश सहगल साहब के पास गए और फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म बनानी शुरू की। और तभी उनकी मुलाकात हुई बलराज सहनी साहब से। बलराज सहनी साहब ने उनको सजेस्ट किया कि वो स्क्रीन के लिए और अपने करियर के लिए अपना नाम बदल दें, बलराज दत्त की जगह सुनील दत्त कर दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और रेलवे प्लेटफॉर्म जहां मदर इंडिया से थोड़ी कम मशहूर हुई, लेकिन लोगों ने पहचाना उनको फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से।

1957 में मदर इंडिया की सफलता, महान सफलता का, ये सफलता नहीं, महान सफलता के बाद उनकी फिल्म आई साधना 1958 में, और वो भी एक सुपरहिट फिल्म रही और विमेंस लिबरेशन, विमेंस राइट्स के लिए वो फिल्म बहुत ही मशहूर रही। और आपने अक्सर इस फिल्म से विजयंतीमाला जी के गीतों के कार्यक्रम में, बी आर चोपड़ा

साहब की फिल्मों के गानों के कार्यक्रम में ये गाना जरूर सुना होगा, इसलिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में इस गाने का कुछ भाग ही आपको सुनाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि कितनी देशभक्त और कितने समाज के को उठाने वाली फिल्में बनती थीं उन दिनों में।

0: आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद अपनी पसंद बना सकें और जैसा मैंने कहा क्योंकि आज मैं कार्यक्रम लाइव नहीं दे पा रहा इसलिए आपकी फरमाइश नहीं ले पाऊंगा लेकिन अब समय है 2:20 और आपके लिए पेश कर रहा हूं आज की पहली सूचनाएं
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Managing money can feel overwhelming, especially when balancing study, work and independence. A 1.5-hour webinar on Thursday, June 18 will help young adults budget, spend wisely and manage debt with confidence. This engaging free webinar is presented by Betsy Westcott, one of Australia's leading financial well-being educators, coach and media commentator. Bookings are essential at events.humanitics.com/moneyskillsIRL.
4: Don't you just love live radio?
5: Accidentally. Accidentally. Accidentally, Curly's Treat. Friday evenings, 9 to 11pm. On 2RRR, hashtag live on 88.5.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो महान गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है सुनील दत्त जी की ये बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म तो थी ही लेकिन फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे जैसा कि आपने पहले सुना ही देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान इसी तरह से इसका एक गाना था बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाए बंजारा बहुत ही प्यारा गाना है ये आपके लिए पेश कर रहा हूं उम्मीद है आपको पसंद आएगा इसका संगीत दिया है मदन मोहन जी ने और लिखा है साहिर लुधियानवी ने जी ने 1955 में यह फिल्म आई थी लेकिन गाने को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आज भी उसके जो मायने हैं बहुत ही मायने रखते हैं

बहुत ही प्यारा गाना और इस गाने के बाद जो गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो भी उनकी एक हिट फिल्म से है और बहुत ही प्यारी फिल्म भी थी ये। और आपको बता दूँ हेमंत कुमार जी जो उस समय उभरते हुए एक प्लेबैक सिंगर थे उनकी है आवाज़ इस गाने में और फिल्म है एक ही रास्ता। और ये फिल्म भी सुनील दत्त की बाकी फिल्मों की तरह बहुत पॉपुलर हुई थी।

और फिर एक फिल्म आई जो सुनील दत्त के लिए तो बनी ही बेहतरीन फिल्म, लेकिन फिल्म की हीरोइन नूतन के लिए भी बहुत अच्छी फिल्म बनी, और ये फिल्म थी सुजाता। और फिल्म सुजाता के गाने बहुत ही बढ़िया थे, और ये गाना है तलत महमूद जी की आवाज़ है इस गाने में, सुजाता के इस गाने में। और पर्दे पर थे सुनील दत्त जी, और इस गाने का संगीत दिया एस टी बर्मन साहब ने, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी जी ने। नूतन जी थी इस फिल्म में, सुनील दत्त तो थे ही, लेकिन वो उस समय की मशहूर एक वैम्प वो भी थी शशिकला जी। और फरीदा जलाल जी अब बच्ची थी उस समय, छोटी बच्ची थी, लेकिन फिल्मों में आ रही थी, तो वो भी थी इसमें, नाम था बेबी फरीदा जी हाँ। और फिल्म अत्यंत ही पॉपुलर हुई। तो पेश है आपके लिए फिल्म सुजाता का ये बेहतरीन गाना।

सुनील दत्त जी ने अपने करियर में सभी तरह के रोल किए, रोमांटिक रोल भी उन्होंने ऐसे किए कि सबके दिलों में छा गए, जैसे कि ये जो फिल्म थी सुजाता, आशा पारेख जी के साथ उनका रोमांस था और उनको उनके सामने जाकर भी गाने की जरूरत नहीं पड़ी, फोन पर ही उनको रिझा दिया उन्होंने। और ऐसे ही एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, इंसान जाग उठा, उसमें उन्होंने आउटडोर शूटिंग में ये गाना पर्दे पर पेश किया था और ये गाना उन्होंने इतना रोमांटिक बना दिया था मधुबाला जी के लिए कि बस आप पर्दे पर देखते ही रहते हैं कि ये गाना कैसे चल रहा है और इसमें जो अदाकार हैं कैसे अदाकारी पेश कर रहे हैं। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त और मधुबाला जी की बेहतरीन फिल्म इंसान जाग उठा से। और इंसान जाग उठा भी एक समाज के लिए एक ऐसी फिल्म थी जिसमें समाज में मेहनत और सच्चाई की ताकत को दिखाया था। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में चांद समुखड़ा क्यों शर्माए।

0: कभी ना अलग हुई काया से छाया जैसा मुखड़ा जो शर्माया चांद सा मुखड़ा।
1: गांव की जीवन की सच्चाई पर बनी एक फिल्म उसने कहा था, सुनील दत्त जी थे उसके हीरो और उसका एक रोमांटिक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था और नंदा जी थी उनकी हीरोइन इस फिल्म में और गाना बहुत ही प्यारा है और ये गाने के बोल हैं आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत नए और फिल्म जैसे मैंने बताया उसने कहा था और लता जी और तलत जी की मधुर आवाजें और संगीत दिया था इसका उस महान कलाकार म्यूजिक डायरेक्टर ने जो केवल चुनिंदा फिल्में ही लेते थे और उसने कहा जी था भी उन्होंने इसीलिए चुनी थी क्योंकि इसकी कहानी समाज के लिए बहुत ज़रूरी थी। एक गांव किस तरह से बदलता है दिखाया गया है इसमें और धरती से जुड़े हुए शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त जी पर फिल्माया गया, नंदा जी पर फिल्माया गया फिल्म उसने कहा था का ये प्यारा सा गीत आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत नए।

0: माफ कीजिए, इस रुकावट के लिए मैं कोशिश करता हूं कि ये रुकावट दूर हो जाए और गाना आप तक पहुंच सके। तो
1: सुर में गाना सीखिए पादानी साहब के साथ,
0: इस गाने में कोई रुकावट ना आने पाए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें ना हो, लेकिन फिर भी बातें हो जाती हैं। तो पेश है ये गाना।

फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई एक फूल चार कांटे, और जैसा एक टाइटल से पता ही चलता है कि ये एक प्रेम कहानी है। और लेकिन इस फिल्म में उन पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना तो नहीं पेश किया गया, लेकिन जॉनी वॉकर साहब जो उस समय के जाने माने अदाकार थे और उनकी कॉमेडी बहुत ही पसंद की जाती थी, वो भी थे इस फिल्म में, तो उन पर एक रोमांटिक गाना पेश किया गया था। वो गाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। सुनील दत्त जी की फिल्म थी एक फूल चार कांटे।

0: मिट रहा है तुझ पे तो कोई ए पलट पलट के यूं न दे मर जाए राहों में दिल वाले ऐसी नजर से तू न देख तिरछी नजर से यूं न दे पलट पलट के यूं न दे मर जाए राहों में दिल वाले ऐसी नजर से तू न देख तिरछी नजर से यूं न दे।
1: और सुनील दत्त साहब ने केवल फिल्मों में दूसरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ ही काम नहीं किया, उन्होंने अपनी अजंता आर्ट्स फिल्म कंपनी जो है खोली, जिसने बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। और इस अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन के साथ साथ उनको ये भी मौका मिला कि वो जिस तरह की फिल्म चाहे, जो उनकी पसंद कर सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, वो फिल्म बना सकें। तो उन्होंने एक ऐसी ही फिल्म बनाई, यादें। फिल्म यादें जो थी, एक परिवार के मुखिया की कहानी है, जिसका परिवार उसे एक दिन छोड़कर चला जाता है और वो घर में अकेला रह जाता है। और इस फिल्म में अकेले सुनील दत्त जी ही थे। जी हाँ, अकेले सुनील दत्त जी ही थे। और फिल्म सुनील दत्त ऐसी केवल अकेले थे, लेकिन उनकी अदाकारी बहुत पसंद की गई, इतनी पसंद की गई कि फिल्म को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, फ्यूएस्ट एक्टर्स इन ए नैरेटिव फिल्म कैटेगरी में। और फिल्म यादें, जैसा मैंने कहा, पर्दे पर बहुत, भारत में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अदाकारी सुनील दत्त जी की और उनका ये फिल्म का सब्जेक्ट चुनना सब ने और फिल्म क्रिटिक्स ने खास तौर से सराहा। फिर उन्होंने मीना कुमारी जी के साथ एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म में एक गाना था, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में फिल्माया गया, सुनील दत्त और मीना कुमारी जी पर। बहुत ही रोमांटिक गाना और प्यारा गाना, कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। और ये फिल्म जो है, इसका ये गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर ने जो भी कुछ कमी फिल्में बनाते थे, लेकिन जो भी फिल्म बनाते थे उसके गाने काफ़ी मशहूर होते थे। उनका नाम है चित्रगुप्त।

और फिर आई फिल्म गुमराह. फिल्म गुमराह से कहिए या उस समय की फिल्मों से कहिए जो अभी भी समाज के बारे में बन रही थी, ये भी एक ऐसी ही फिल्म थी गुमराह, कि समाज किस चीज़ को तवज्जो देता है, किस चीज़ को नहीं देता, किस चीज़ को अच्छा मानता है, किस चीज़ को अच्छा नहीं मानता. ऐसा ही था फिल्म गुमराह का भी संदेश और फिल्म गुमराह की कहानी. और फिल्म गुमराह में गाने सबसे बढ़िया थे, रोमांटिक गाने तो खास तौर से, आजा आजा रे तुझे मेरा प्यार पुकारे, और आप आए तो ख्याले नाशाद, दिले नाशाद आया, और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, या फिर वो गाना इन हवाओं में इन फिजाओं में. तो कौन सा गाना पेश करूं, अक्सर यही दुविधा मेरे को होती है जब मैं गाना आपके लिए चुनता हूं, लेकिन उम्मीद है पहले ये गाना आपके लिए पेश करता हूं, फिर आगे अगर समय रहा तो गुमराह का कोई और गाना भी आपके लिए ज़रूर पेश करूंगा, और उम्मीद यही है कि आपको मेरी पसंद पसंद आएगी. और जैसा मैंने कहा, ये लिरिक्स गाए थे महेंद्र कपूर जी और आशा भोसले जी ने, और फिल्म गुमराह के लिए संगीत दिया था महान संगीतकार रवि साहब ने, और साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था ये बेहतरीन गाना, और आप सुन रहे हैं इसे.

0: Roll Up Monday Nights for Pop Rock with Robbie, playing all the best sounds from the 50s, 60s and 70s. Plus, dedication songs, one-hit wonders and much more. It's fab, it's gear, it's Pop Rock.
1: संदेशों के बाद एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर 14 जून के महक कार्यक्रम में जिसमें आज आपके लिए पेश कर रहा हूं सुनील दत्त जी की फिल्मों के गाने. सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं धन सिंह मेजर धन सिंह थापा की तरफ जिन्होंने जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया उनकी बहादुरी के लिए.

चीन की बार बार भारतीय सीमा पर को पार करने को रोकने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी के अधीन बॉर्डर पर चीन और भारत के बॉर्डर पर बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट बनाए गए थे। ऐसा ही एक पोस्ट था श्रीजप 1 पर

चीन ने श्रीजाब वन के चारों ओर तीन पोस्ट खड़े कर दिए थे। 19 अक्टूबर 1962 को चीन की ओर से भारी गिनती में इन्फेंट्री ट्रूप्स आए। मेजर थापा को अंदेशा हो गया कि हमला होने वाला है। अपने जवानों को तैयार होने के आदेश दिए। 20 अक्टूबर 1962 सुबह 4:30 बजे पहला हमला हुआ, आर्टिलरी और मोर्टर फायर के साथ। 2.5 घंटों तक फायरिंग चली। जब रुकी तो 600 के करीब चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट से करीब 150 गज दूर ही खड़े थे। चीनी सैनिकों को देखते ही गोरखों ने लाइट मशीन गन और राइफल से फायरिंग शुरू कर दी।

और दुश्मन की भारी गिनती और भारी हमले के सामने मेजर थापा ने जिस तरह से अपने सिपाहियों अपने 28 सिपाहियों को बल दिया, उनको ताकत दी, वो बहुत ही अलग तरह की थी। मेजर थापा ने सूबेदार मेजर बहादुर गुरुंग के साथ जगह जगह जाकर फायरिंग साधी, कई जगह बदली। चीन के सैनिक भारी गिनती में मारे गए और भारत के भी कई सैनिक शहीद हुए। चीन अब तक 50 गज की दूरी पर ही था। चीनी सैनिकों ने आग के गोले फेंके भारतीय सैनिकों को पोस्ट छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। भारतीय सैनिकों ने हैंड ग्रेनेड और छोटी गोलीबारी की। सूबेदार गुरुंग जो LMG चला रहा था, एक बंकर गिरने से उसके नीचे दब गया, लेकिन उसने अपने आप को मलबे से निकाला, फिर LMG चलानी शुरू कर दी और अंतिम सांस तक LMG चलाता रहा। दूसरा हमला पोस्ट पर केवल जब हुआ तो पोस्ट में केवल 7 सैनिक बचे थे। चीनी सैनिकों ने हैवी मशीन गन और बजूका से और लेक की तरफ से, जो वहाँ तालाब था, लेक की तरफ से, लेक में से ही पानी और ज़मीन पर चलने वाले क्राफ्ट से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों की मदद के लिए तभी भेजी गई 2 कश्तियाँ आईं, लेकिन भारी चीनी फायरिंग में एक कश्ती डूब गई और उस पर सवार सारे सैनिक मारे गए। दूसरी कश्ती पर भी फायरिंग हुई, लेकिन वो बच निकलने में सफल हो गई।

और तीसरा हमला हुआ और तीसरा हमला जब हुआ तो चीनी सेना टैंक्स लेकर आई और टैंक्स के साथ हमला किया. केवल 3 सैनिक बचे थे पोस्ट श्री जैप पर. मेजर थापा के बंकर पर बम गिरा लेकिन मेजर थापा बच निकले, बंकर से बाहर आए और हैंड टू हैंड लड़ाई करते हुए दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा. मेजर थापा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया, बंदी बना दिया और उन्हें अपने साथ ले गए. उधर हेडक्वार्टर में नायक थापा, जिसका नाम भी थापा था, नायक था वो नायक थापा ने खबर दी कि श्री जैप पर चीन ने कब्जा कर लिया है और सभी सैनिक शहीद हो गए हैं. उन्हें मालूम नहीं था कि 3 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था, इनमें से राइफलमैन

तुलसीराम थापा भागने में कामयाब रहा और वापस बटालियन में आ गया। बहुत समय बाद पता चला बटालियन में कि मेजर थापा को भी बंदी बना लिया गया था और उन्हें भारी यातनाएं दी गई। चीनी सैनिकों को मारने की सजा के तौर पर भारतीय सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए इनकार करने के लिए भी उन्हें यातनाएं दी गई। भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद नवंबर 1962 में मेजर थापा को चीन ने छोड़ दिया। मेजर थापा को 20 अक्टूबर 1962 के दिन उनकी दिखाई बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साइटेशन में लिखा गया उनकी बहादुरी के बारे में और 20 अक्टूबर 1962 की लड़ाई के विवरण के साथ।

जनरल थापा की साइटेशन में लिखा गया उनकी बहादुरी के बारे में 20 अक्टूबर की 1962 की लड़ाई के विवरण के साथ दो कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन नंबर, कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, आप सोचेंगे 28 में से केवल 4 ही तो रह गए थे, तो सही लिखा कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, बल्कि मैं तो कहूँगा टोटली रिड्यूस्ड है। खैर, दो कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन नंबर द पोस्ट हेल्ड आउट टू द लास्ट व्हेन इट वॉज फाइनली ओवररन बाय ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ द एनिमी। मेजर थापा गॉट आउट ऑफ हिज ट्रेंच एंड किल्ड several of the army in hand-to-hand fighting before he was finally overpowered by the Chinese soldiers. Major Thapa's cool courage, conspicuous fighting qualities and leadership were in the highest traditions of our army. Aur is tarah se unko Paramveer Chakra se sammanit kiya gaya aur wo shamil hue un 23 logon mein. केवल 23 लोग हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है उनकी सेना की सेवाओं के लिए। मेजर थापा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से रिटायर हुए 30 अप्रैल 1980 को, 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में, 77 इयर्स की एज में उनका स्वर्गवास हुआ। उनको शत शत हमारा नमन। जय हिंद।

आइए चलें सुनील दत्त जी की फिल्मों के तरफ वापस। और सुनील दत्त जी ने भी अपनी फिल्मों में देश प्रेम को बहुत बड़ी जगह दी है। मुझे जी ने तो फिल्म जो उन्होंने बनाई उसमें भी एक ऐसी ही व्यथा थी इस हमारे समाज की कि डाकू जो हैं वो अपनी कहर फैला रहे थे और देश को खतरे में डाल रहे थे, और उन्होंने उन डाकुओं को सुधारने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसके बारे में ये फिल्म बनाई थी मुझे जी ने। तो वहीदा रहमान जी थी इस फिल्म में उनके साथ, और ये गाना इसी इसी बात को, इसी संदेश को लेकर बना है।

और अब जो गाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ उनकी एक फिल्म आई थी देश प्रेम की ही वो भी फिल्म थी और इसमें फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी और इसका एक गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था हम हिंदुस्तानी देश प्रेम का आशा पारेख जी थी इस फिल्म में उनके साथ और इस गाने को आवाज़ दी थी मुकेश साहब ने और उषा खन्ना जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया उन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया था और प्रेम धवन जी ने ये देश प्रेम का गीत लिखा था और इस फिल्म में आपको बता दूं कि जॉय मुखर्जी भी थे जो बहुत कम लोगों को मालूम है उनका एक छोटा रोल था और हेलन जी थी वो तो धूम मचाती थी फिल्मों में जब भी आती थी और उस समय के एक अच्छे कलाकार जो कॉमेडी कलाकार थे वो भी थे और उनका नाम है आगा तो पेश है आपके लिए फिल्म हम हिंदुस्तानी

बहुत ही प्यारा गाना फिल्म आज और कल। और इसी तरह से उनकी एक और फिल्म आई थी जिसका गाना भी बहुत ही प्यारा था, और ये फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। ये रास्ते हैं प्यार के दरअसल में एक ट्रू लाइफ स्टोरी थी नानावती केस की, और फिल्म का की जो स्टोरी थी वो तो नानावती पर ही आधारित थी। नानावती की स्टोरी यूं थी कि नानावती, जाहिर है अगर वो नेवी में थे तो घर पर कम रहते थे और बोट पर ज़्यादा रहते थे, शिप पर। तो ऐसे ही एक सफ़र में कुछ यूं हुआ कि उनकी पत्नी के बारे में, उनके लव अफेयर के बारे में फैलाई गई बात, और नानावती को ये बात चुप गई, और उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर लेकर जाकर उस शख्स का खून कर दिया। उसका नाम था अबूजा, और उसका दोस्त भी था। उसे बहुत गुस्सा आया नानावती को, और इसी कहानी पर बेस्ड है फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के। 1963 में बनी थी ये फिल्म, और एक उन दिनों में एक अखबार हुआ करता था ब्लिट्स, आजकल पता है नहीं है कि नहीं, भारत के बारे में मुझे ज़्यादा अब जानकारी नहीं है, लेकिन उस ब्लिट्स में इस केस को खूब कवर किया गया था, और ब्लिट्स का जो मालिक था वो भी नानावती की सपोर्ट में सामने आया था। तो ये रास्ते हैं प्यार के, और यही इसके बोल हैं, ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। और रवि साहब ने इसका संगीत दिया था, रफ़ी साहब ने और आशा जी ने आवाज़ दी थी। तो पेश है आपके लिए ये खामोशियां, ये तन्हाइयां।

बहुत ही एक रोमांटिक गाना सुनील दत्त जी पर फिल्माया गया और फिल्म थी ये खामोशियां ये तन्हाइयां। अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है उनकी बहुत ही एक प्यारी फिल्म गजल से, और फिल्म गजल का ये गाना है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, आवाज है बेमिसाल रफी साहब की और संगीत है बेमिसाल संगीतकार मदन मोहन जी का, गीत लिखा है वो भी एक बेमिसाल लिरिसिस्ट रहे हैं साहिर लुधियानवी जी। और इस फिल्म के लिए सुनील दत्त जी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया 1965 में, और बहुत ये अच्छी इनकी एक्टिंग थी इस फिल्म गजल में। तो पेश है आपके लिए रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

इस फिल्म के लिए, गजल के लिए जो 1964 में बनी थी, उनको नवाजा गया था फिल्म फेयर बेस्ट एक्टिंग अवार्ड से, और इसी तरह से उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टिंग अवार्ड्स से नवाजा गया 1965 में फिल्म खानदान के लिए, और उस समय वो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थे। और इस फिल्म वक्त में एक थोड़ा सीरियस गाना था उनका, वो उसका कुछ छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूँ। और बहुत ही पॉपुलर थी ये फिल्म खानदान, नूतन जी थी इस फिल्म में और इसके गाने भी बहुत ही बेहतरीन थे।

अगले सप्ताह मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, सुरैया जी, जिया वही जिन्होंने अनारकली में अपना जलवा दिखाया था, किरण खेर जो आजकल पॉलिटिशियन बन गई हैं, हेमंत कुमार जी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हमें, भारत भूषण जी जो एक ऐसी फिल्मों में आए जो यादगार फिल्में बन गई, मजरू सुल्तानपुरी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, और के आसिफ जिन्होंने मुगल आज़म बनाए, उनके हैं जन्मदिन। और हम आपके लिए अगला गाना जो पेश कर रहे हैं वो है फिल्म वक्त का, जो एक बार फिर उनके शिखर कैरेक्टर के शिखर की फिल्म थी।

बहुत ही प्यारा गाना, और अगला गाना जो है इस गाने के बाद जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, सुनील दत्त जी ने बहुत ही अच्छी एक फिल्म की थी, साधना जी के साथ थी फिल्म वक्त, और उसमें ये गाना, उसमें वैसे तो सारे गाने उसमें बहुत बढ़िया थे, लेकिन ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, रोमांटिक गाना है, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए।

और उनकी एक और फिल्म का एक गाना बहुत ही प्यारा है और उस गाने को भी आपके लिए थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा. और ये बहुत ही प्यारा गाना है फिल्म मिलन का. आप जानते हैं मिलन फिल्म में सुनील दत्त जी और नूतन जी थे और फिल्म अत्यंत ही सफल हुई थी. माफ कीजिए इस गड़बड़ के लिए और चाहता हूँ कि ये गड़बड़ ना हो, तो पेश उम्मीद करता हूँ कि ये गड़बड़ नहीं होगी और हम आपको इस गाने की कुछ हिस्सा ज़रूर सुना पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम रह रहा है. और ये गाना आपको सुनाना ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये गाने का हिस्सा ज़रूर, थोड़ा सा ज़रूर सुनें.

अगले सप्ताह सलमान रश्दी, ओंग सैन सू ची जो बर्मा की लीडर हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लिएंडर पेस जो टेनिस प्लेयर हैं, अन्ना हजारे सोशल एक्टिविस्ट और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं,

और अंतिम गाना जो वो भी मैं आपको पूरा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है और शायद ना ही सुना पाऊं तो इसलिए यही गाना आपके लिए छोड़ते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूं और उम्मीद करता हूं अगले सप्ताह फिर आपके सामने आपके लिए कार्यक्रम लेकर आऊंगा यहीं 2RRR 88.5 FM पर. नमस्कार.

आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुखदेव जसवाल का आपको सादर नमस्कार। चौदह जून के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का एक बार फिर सादर नमस्कार। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, सुखदेव जसवाल।

आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गाने। हम श्रद्धांजलि देंगे धन सिंह थापा, मेजर धन सिंह थापा, परमवीर चक्र सम्मानित। आज क्योंकि किसी कारण मैं कार्यक्रम लाइव यहाँ स्टूडियो में नहीं दे पा रहा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी फरमाइश नहीं ले पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो गाने आपके लिए मैं चुन कर लाया हूँ आपको पसंद आएंगे। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं RRR.org.au पे, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, या फिर आप एक फ्री ऐप, मुफ्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने चुनिंदा, अपने फेवरेट ऐप स्टोर से। ऐप का नाम है कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हों सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक।

सुनील दत्त एक ऐसे कलाकार जिनमें सिविक सेंस, कम्युनिटी के लिए दिल में जगह और देश के लिए दिल में जगह कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनकी फिल्मों में भी यही नज़र आता था। सुनील दत्त जी का यूं तो जन्म तो हुआ आजकल जो पाकिस्तान में है, लेकिन वो पाकिस्तान और भारत दोनों के बन गए। उनका जन्म हुआ 6 जून 1929 को नाका खुर्द में, जो जेलम डिस्ट्रिक्ट में है जो अब पाकिस्तान में है। उनकी परिवार जो था वो हुसैनी ब्राह्मण लैंडलॉर्ड फैमिली था, अमीर परिवार था, और सुनील दत्त जी के एक छोटे भाई राज सोमदत्त और उनकी बहन राज रानी बाली, जिनका के जिनकी मृत्यु वो केवल जब 5 साल के थे तब हो गई थी। सुनील दत्त जब 18 साल के थे तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम दंगों में हिंदुओं को मारते थे, हिंदू मुस्लिमों को मारते थे। ऐसे में सुनील दत्त जी के परिवार को एक मुस्लिम दोस्त याकूब ने बचाया और उन्हें भारत आने में मदद दी। भारत आकर वो यमुना किनारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पंजाब में बस गए। ये यमुनानगर अब हरियाणा में है। उसके बाद परिवार अमीनाबाद बाजार नेबरहुड जो लखनऊ की है वहाँ चले गए यूपी में, और तो कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो बॉम्बे आ गए और बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में पढ़ने लगे, और BEST जो आज भी BEST है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बस सर्विस, उसमें काम करने लगे और इंजीनियरिंग डिवीजन में उनको काम मिला। 1954 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की, और डायरेक्टर रमेश सहगल उनके जीवन में बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया। वो एक रेडियो कार्यक्रम पेश करने की सोच रहे थे, लिप्टन की महफिल रेडियो सिलोन पर, और फिल्म इंडस्ट्री से वो चाहते थे कोई आए, और उन्होंने चुना सुनील दत्त को। यही नहीं, उन्होंने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में सुनील दत्त जी को कास्ट भी किया एज ए हीरो, और इस फिल्म का गाना आपको मैं जल्दी ही सुनाऊंगा। लेकिन सुनील दत्त जी का चरित्र और सुनील दत्त जी की हाव भाव जो थे वो उनके इस गाने से बहुत अच्छी तरह सामने आते हैं, जो मैंने लिया है मदर इंडिया से।

यूं तो कहा जाए तो मदर इंडिया ही वो फिल्म थी जिसके दम पर सुनील दत्त को स्टारडम मिला, पहचान मिली, और फिल्म मदर इंडिया 1957 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और लेकिन उन्होंने अपना करियर शुरू किया रमेश सहगल के कारण, वही रमेश सहगल जिन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी माताजी ने कहा था पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, उसके बाद जो भी करना है करना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की बॉम्बे से, और फिर उसके बाद वो रमेश सहगल साहब के पास गए और फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म बनानी शुरू की। और तभी उनकी मुलाकात हुई बलराज सहनी साहब से। बलराज सहनी साहब ने उनको सजेस्ट किया कि वो स्क्रीन के लिए और अपने करियर के लिए अपना नाम बदल दें, बलराज दत्त की जगह सुनील दत्त कर दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और रेलवे प्लेटफॉर्म जहां मदर इंडिया से थोड़ी कम मशहूर हुई, लेकिन लोगों ने पहचाना उनको फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से।

1957 में मदर इंडिया की सफलता, महान सफलता का ये सफलता नहीं, महान सफलता के बाद उनकी फिल्म आई साधना 1958 में, और वो भी एक सुपरहिट फिल्म रही और विमेंस लिबरेशन, विमेंस राइट्स के लिए वो फिल्म बहुत ही मशहूर रही। और आपने अक्सर इस फिल्म से विजयंतीमाला जी के गीतों के कार्यक्रम में, बी आर चोपड़ा साहब की फिल्मों के गानों के कार्यक्रम में ये गाना ज़रूर सुना होगा। इसलिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में इस गाने का कुछ भाग ही आपको सुनाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि कितने देशभक्त और कितने समाज के को उठाने वाली फिल्में बनती थीं उन दिनों में।

0: आप सुन रहे हैं महक टू ट्रिपल आर 88.5 एफएम पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार दो से चार बजे तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल. कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद अपनी पसंद बना सकें. और जैसा मैंने कहा क्योंकि आज मैं कार्यक्रम लाइव नहीं दे पा रहा इसलिए आपकी फरमाइश नहीं ले पाऊंगा. लेकिन अब समय है 2:20 और आपके लिए पेश कर रहा हूं आज की पहली सूचनाएं.
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Managing money can feel overwhelming, especially when balancing study, work and independence. A 1.5-hour webinar on Thursday, June 18 will help young adults budget, spend wisely and manage debt with confidence. This engaging free webinar is presented by Betsy Westcott, one of Australia's leading financial well-being educators, coach and media commentator. Bookings are essential at events.humanitics.com/moneyskillsIRL.
4: Don't you just love live radio?
5: Accidentally. Accidentally. Accidentally, Curly's Treat. Friday evenings, 9 to 11pm. On 2RRR, hashtag live on 88.5.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज सुनील दर्जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में. और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो महान गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है. सुनील दर्जी की ये बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म तो थी ही लेकिन फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे जैसा कि आपने पहले सुना ही देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान. इसी तरह से इसका एक गाना था बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाए बंजारा. बहुत ही प्यारा गाना है ये आपके लिए पेश कर रहा हूँ उम्मीद है आपको पसंद आएगा. इसका संगीत दिया है मदन मोहन जी ने और लिखा है साहिर लुधियानवी ने जी ने. 1955 में ये फिल्म आई थी लेकिन गाने को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आज भी उसके जो मायने हैं बहुत ही मायने रखते हैं.

बहुत ही प्यारा गाना, और इस गाने के बाद जो गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो भी उनकी एक हिट फिल्म से है, और बहुत ही प्यारी फिल्म भी थी ये। और आपको बता दूँ, हेमंत कुमार जी जो उस समय उभरते हुए एक प्लेबैक सिंगर थे, उनकी है आवाज़ इस गाने में, और फिल्म है एक ही रास्ता। और ये फिल्म भी सुनील दत्त की बाकी फिल्मों की तरह बहुत पॉपुलर हुई थी।

और फिर एक फिल्म आई जो सुनील दत्त के लिए तो बनी ही बेहतरीन फिल्म, लेकिन फिल्म की हीरोइन नूतन के लिए भी बहुत अच्छी फिल्म बनी, और ये फिल्म थी सुजाता। और फिल्म सुजाता के गाने बहुत ही बढ़िया थे, और ये गाना है तलत महमूद जी की आवाज़ है इस गाने में, सुजाता के इस गाने में। और पर्दे पर थे सुनील दत्त जी, और इस गाने का संगीत दिया एस टी बर्मन साहब ने, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी जी ने। नूतन जी थी इस फिल्म में, सुनील दत्त तो थे ही, लेकिन वो उस समय की मशहूर एक वैम्प वो भी थी शशि कला जी। और फरीदा जलाल जी अब बच्ची थी उस समय, छोटी बच्ची थी, लेकिन फिल्मों में आ रही थी, तो वो भी थी इसमें, नाम था बेबी फरीदा जी हाँ। और फिल्म अत्यंत ही पॉपुलर हुई। तो पेश है आपके लिए फिल्म सुजाता का ये बेहतरीन गाना।

सुनील दत्त जी ने अपने करियर में सभी तरह के रोल किए, रोमांटिक रोल भी उन्होंने ऐसे किए कि सबके दिलों में छा गए, जैसे कि ये जो फिल्म थी सुजाता, आशा पारेख जी के साथ उनका रोमांस था, और उनको उनके सामने जाकर भी गाने की जरूरत नहीं पड़ी, फोन पर ही उनको रिझा दिया उन्होंने। और ऐसे ही एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, इंसान जाग उठा, उसमें उन्होंने आउटडोर शूटिंग में ये गाना पर्दे पर पेश किया था, और ये गाना उन्होंने इतना रोमांटिक बना दिया था मधुबाला जी के लिए कि बस आप पर्दे पर देखते ही रहते हैं कि ये गाना कैसे चल रहा है और इसमें जो अदाकार हैं कैसे अदाकारी पेश कर रहे हैं। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त और मधुबाला जी की बेहतरीन फिल्म इंसान जाग उठा से, और इंसान जाग उठा भी एक समाज के लिए एक ऐसी फिल्म थी जिसमें समाज में मेहनत और सच्चाई की ताकत को दिखाया था। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माए।

0: कभी ना अलग हुई काया से छाया जैसा मुखड़ा जो शर्माया चांद सा मुखड़ा।
1: गांव की जीवन की सच्चाई पर बनी एक फिल्म उसने कहा था, सुनील दत्त जी थे उसके हीरो, और उसका एक रोमांटिक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, और नंदा जी थी उनकी हीरोइन इस फिल्म में, और गाना बहुत ही प्यारा है, और ये गाने के बोल हैं आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत नए, और फिल्म जैसे मैंने बताया उसने कहा था, और लता जी और तलत जी की मधुर आवाज़ें, और संगीत दिया था इसका उस महान कलाकार म्यूजिक डायरेक्टर ने जो केवल चुनिंदा फिल्में ही लेते थे, और उसने कहा जी था भी उन्होंने इसीलिए चुनी थी क्योंकि इसकी कहानी समाज के लिए बहुत ज़रूरी थी, एक गांव किस तरह से बदलता है दिखाया गया है इसमें, और धरती से जुड़े हुए शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था। तो पेश है आपके लिए सुनील दत्त जी पर फिल्माया गया, नंदा जी पर फिल्माया गया फिल्म उसने कहा था का ये प्यारा सा गीत आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत नए।

0: माफ कीजिए, इस रुकावट के लिए मैं कोशिश करता हूं कि ये रुकावट दूर हो जाए और गाना आप तक पहुंच सके। तो
1: सुर में गाना सीखिए पादानी सा आपके साथ,
0: इस गाने में कोई रुकावट ना आने पाए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें ना हों, लेकिन फिर भी बातें हो जाती हैं। तो पेश है ये गाना।

फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई एक फूल चार कांटे, और जैसा एक टाइटल से पता ही चलता है कि ये एक प्रेम कहानी है। और लेकिन इस फिल्म में उन पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना तो नहीं पेश किया गया, लेकिन जॉनी वॉकर साहब जो उस समय के जाने माने अदाकार थे और उनकी कॉमेडी बहुत ही पसंद की जाती थी, वो भी थे इस फिल्म में, तो उन पर एक रोमांटिक गाना पेश किया गया था। वो गाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। सुनील दत्त जी की फिल्म थी एक फूल चार कांटे।

और सुनील दत्त साहब ने केवल फिल्मों में दूसरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ ही काम नहीं किया, उन्होंने अपनी अजंता आर्ट्स फिल्म कंपनी जो है खोली, जिसने बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। और इस अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन के साथ साथ उनको ये भी मौका मिला कि वो जिस तरह की फिल्म चाहे, जो उनकी पसंद कर सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, वो फिल्म बना सकें। तो उन्होंने एक ऐसी ही फिल्म बनाई, यादें। फिल्म यादें जो थी, एक परिवार के मुखिया की कहानी है, जिसका परिवार उसे एक दिन छोड़कर चला जाता है और वो घर में अकेला रह जाता है। और इस फिल्म में अकेले सुनील दत्त जी ही थे। जी हाँ, अकेले सुनील दत्त जी ही थे। और फिल्म सुनील दत्त ऐसी केवल अकेले थे, लेकिन उनकी अदाकारी बहुत पसंद की गई, इतनी पसंद की गई कि फिल्म को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया फ्यूएस्ट एक्टर्स इन ए नैरेटिव फिल्म कैटेगरी में। और फिल्म यादें, जैसे मैंने कहा, पर्दे पर बहुत, भारत में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अदाकारी सुनील दत्त जी की और उनका ये फिल्म का सब्जेक्ट चुनना सब ने और फिल्म क्रिटिक्स ने खास तौर से सराहा। फिर उन्होंने मीना कुमारी जी के साथ एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म में एक गाना था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में फिल्माया गया, सुनील दत्त और मीना कुमारी जी पर। बहुत ही रोमांटिक गाना और प्यारा गाना। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। और ये फिल्म जो है, इसका ये गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर ने जो भी कुछ कमी फिल्में बनाते थे, लेकिन जो भी फिल्म बनाते थे उसके गाने काफ़ी मशहूर होते थे। उनका नाम है चित्रगुप्त।

और फिर आई फिल्म गुमराह से कहिए या उस समय की फिल्मों से कहिए जो अभी भी समाज के बारे में बन रही थी। ये भी एक ऐसी ही फिल्म थी गुमराह, कि समाज किस चीज़ को तवज्जो देता है, किस चीज़ को नहीं देता, किस चीज़ को अच्छा मानता है, किस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। ऐसा ही था फिल्म गुमराह का भी संदेश और फिल्म गुमराह की कहानी। और फिल्म गुमराह में गाने सबसे बढ़िया थे, रोमांटिक गाने तो खास तौर से, आजा आजा रे तुझे मेरा प्यार पुकारे, और आप आए तो ख्याले नाशाद दिले नाशाद आया, और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, या फिर वो गाना इन हवाओं में इन फिजाओं में। तो कौन सा गाना पेश करूं, अक्सर यही दुविधा मेरे को होती है जब मैं गाना आपके लिए चुनता हूं, लेकिन उम्मीद है पहले ये गाना आपके लिए पेश करता हूं, फिर आगे अगर समय रहा तो गुमराह का कोई और गाना भी आपके लिए ज़रूर पेश करूंगा, और उम्मीद यही है कि आपको मेरी पसंद पसंद आएगी। और जैसा मैंने कहा, ये लिरिक्स गाए थे महेंद्र कपूर जी और आशा भोसले जी ने, और फिल्म गुमराह के लिए संगीत दिया था महान संगीतकार रवि साहब ने, और साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था ये बेहतरीन गाना, और आप सुन रहे हैं इसे महक।

0: Roll Up Monday Nights for Pop Rock with Robbie, playing all the best sounds from the 50s, 60s and 70s. Plus, dedication songs, one-hit wonders and much more. It's fab, it's gear, it's pop rock.
1: संदेशों के बाद एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर 14 जून के महक कार्यक्रम में जिसमें आज आपके लिए पेश कर रहा हूं सुनील दत्त जी की फिल्मों के गाने सुनील दत्त जी की फिल्मों के गानों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं धन सिंह मेजर धन सिंह थापा की तरफ जिन्होंने जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया उनकी बहादुरी के लिए

चीन की बार बार भारतीय सीमा पर को पार करने को रोकने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी के अधीन बॉर्डर पर चीन और भारत के बॉर्डर पर बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट बनाए गए थे। ऐसा ही एक पोस्ट था श्रीजप वन पर, जो पैनगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर लगाया गया। आसपास फॉरवर्ड पॉलिसी के अधीन और भी पोस्ट थे। चुशूल हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए श्रीजप वन का बहुत बड़ा महत्व था। फर्स्ट बटालियन 8 गुरखा राइफल्स की डी कंपनी के मेजर धन सिंह थापा की कमांड के अधीन श्रीजप वन की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई। डी कंपनी में 28 जवान थे। चीन ने श्रीजप वन के चारों ओर 3 पोस्ट खड़े कर दिए थे। 19 अक्टूबर 1962 को चीन की ओर से भारी गिनती में इन्फेंट्री ट्रूप्स आए। मेजर थापा को अंदेशा हो गया कि हमला होने वाला है। अपने जवानों को तैयार होने के आदेश दिए। 20 अक्टूबर 1962 सुबह 4:30 बजे पहला हमला हुआ, आर्टिलरी और मोर्टर फायर के साथ। 2.5 घंटों तक फायरिंग चली। जब रुकी तो 600 के करीब चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट से करीब 150 गज दूर ही खड़े थे। चीनी सैनिकों को देखते ही गोरखों ने लाइट मशीन गन और राइफल से फायरिंग शुरू कर दी।

और दुश्मन की भारी गिनती और भारी हमले के सामने मेजर थापा ने जिस तरह से अपने सिपाहियों अपने 28 सिपाहियों को बल दिया, उनको ताकत दी, वो बहुत ही अलग तरह की थी। मेजर थापा ने सूबेदार मेजर वो बहुत ही अलग तरह की थी मेजर थापा ने सूबेदार मेजर

एक बंकर गिरने से उसके नीचे दब गया, लेकिन उसने अपने आप को मलबे से निकाला, फिर एलएमजी चलानी शुरू कर दी और अंतिम सांस तक एलएमजी चलाता रहा। दूसरा हमला पोस्ट पर केवल जब हुआ तो पोस्ट में केवल 7 सैनिक बचे थे। चीनी सैनिकों ने हैवी मशीन गन और बजूका से और लेक की तरफ से, जो वहाँ तालाब था, लेक की तरफ से, लेक में से ही पानी और ज़मीन पर चलने वाले क्राफ्ट से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों की मदद के लिए तभी भेजी गई 2 कश्तियाँ आईं, लेकिन भारी चीनी फायरिंग में एक कश्ती डूब गई और उस पर सवार सारे सैनिक मारे गए। दूसरी कश्ती पर भी फायरिंग हुई, लेकिन वो बच निकलने में सफल हो गई।

और तीसरा हमला हुआ और तीसरा हमला जब हुआ तो चीनी सेना टैंक्स लेकर आई और टैंक्स के साथ हमला किया. केवल 3 सैनिक बचे थे पोस्ट श्री जैप पर. मेजर थापा के बंकर पर बम गिरा लेकिन मेजर थापा बच निकले, बंकर से बाहर आए और हैंड टू हैंड लड़ाई करते हुए दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा. मेजर थापा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया, बंदी बना दिया और उन्हें अपने साथ ले गए. उधर हेडक्वार्टर में नायक थापा, जिसका नाम भी थापा था, नायक था वो नायक थापा ने खबर दी कि श्री जैप पर चीन ने कब्जा कर लिया है और सभी सैनिक शहीद हो गए हैं. उन्हें मालूम नहीं था कि 3 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था. इनमें से राइफलमैन तुलसीराम थापा भागने में कामयाब रहा और वापस बटालियन में आ गया. बहुत समय बाद पता चला बटालियन में कि मेजर थापा को भी बंदी बना लिया गया था और उन्हें भारी यातनाएं दी गई चीनी सैनिकों को मारने की सजा के तौर पर. भारतीय सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए, इनकार करने के लिए भी उन्हें यातनाएं दी गई. भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद नवंबर 1962 में मेजर थापा को चीन ने छोड़ दिया. मेजर थापा को 20 अक्टूबर 1962 के दिन उनकी दिखाई बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. उनके साइटेशन में लिखा गया उनकी बहादुरी के बारे में और 20 अक्टूबर 1962 की लड़ाई के विवरण के साथ.

जनरल थापा की साइटेशन में लिखा गया उनकी बहादुरी के बारे में 20 अक्टूबर की 1962 की लड़ाई के विवरण के साथ, दो कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन नंबर, कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, आप सोचेंगे 28 में से केवल 4 ही तो रह गए थे, तो सही लिखा कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, बल्कि मैं तो कहूँगा टोटली रिड्यूस्ड है। खैर, दो कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन नंबर द पोस्ट हेल्ड आउट टू द लास्ट व्हेन इट वॉज फाइनली ओवररन बाय ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ द एनिमी। मेजर थापा गॉट आउट ऑफ हिज ट्रेंच एंड किल्ड सेवरल ऑफ द आर्मी इन हैंड टू हैंड

आइए चलें सुनील दत्त जी की फिल्मों के तरफ वापस। और सुनील दत्त जी ने भी अपनी फिल्मों में देश प्रेम को बहुत बड़ी जगह दी है। मुझे जीने तो फिल्म जो उन्होंने बनाई उसमें भी एक ऐसी ही व्यथा थी इस हमारे समाज की कि डाकू जो हैं वो अपनी कहर फैला रहे थे और देश को खतरे में डाल रहे थे, और उन्होंने उन डाकुओं को सुधारने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसके बारे में ये फिल्म बनाई थी मुझे जीने दो। वहीदा रहमान जी थी इस फिल्म में उनके साथ, और ये गाना इसी बात को, इसी संदेश को लेकर बना है।

और अब जो गाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, उनकी एक फिल्म आई थी देश प्रेम की ही, वो भी फिल्म थी, और इसमें फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी, और इसका एक गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था हम हिंदुस्तानी देश प्रेम का। आशा पारिक जी थी इस फिल्म में उनके साथ, और इस गाने को आवाज़ दी थी मुकेश साहब ने, और उषा खन्ना, जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, उन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया था, और प्रेम धवन जी ने ये देश प्रेम का गीत लिखा था। और इस फिल्म में आपको बता दूं कि जॉय मुखर्जी भी थे, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, उनका एक छोटा रोल था, और हेलन जी थी, वो तो धूम मचाती थी फिल्मों में जब भी आती थी, और उस समय के एक अच्छे कलाकार जो कॉमेडी कलाकार थे वो भी थे, और उनका नाम है आगा। तो पेश है आपके लिए फिल्म हम हिंदुस्तानी।

बहुत ही प्यारा गाना, फिल्म आज और कल। और इसी तरह से उनकी एक और फिल्म आई थी जिसका गाना भी बहुत ही प्यारा था, और ये फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। ये रास्ते हैं प्यार के दरअसल में एक ट्रू लाइफ स्टोरी थी नानावती केस की। और फिल्म का की जो स्टोरी थी वो तो नानावती पर ही आधारित थी। नानावती की स्टोरी यूं थी कि नानावती, जाहिर है अगर वो नेवी में थे तो घर पर कम रहते थे और बोट पर ज़्यादा रहते थे, शिप पर। तो ऐसे ही एक सफ़र में कुछ यूं हुआ कि उनकी पत्नी के बारे में, उनके लव अफेयर के बारे में फैलाई गई बात, और नानावती को ये बात चुभ गई और उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर लेकर जाकर उस शख्स का खून कर दिया। उसका नाम था अबूजा और उसका दोस्त भी था। उसे बहुत गुस्सा आया नानावती को, और इसी कहानी पर बेस्ड है फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के। 1963 में बनी थी ये फिल्म, और एक उन दिनों में एक अखबार हुआ करता था ब्लिट्स, आजकल पता है नहीं है कि नहीं, भारत के बारे में मुझे ज़्यादा अब जानकारी नहीं है, लेकिन उस ब्लिट्स में इस केस को खूब कवर किया गया था। और ब्लिट्स का जो मालिक था वो भी नानावती की सपोर्ट में सामने आया था। तो ये रास्ते हैं प्यार के, और यही इसके बोल हैं, ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। और रवि साहब ने इसका संगीत दिया था, रफ़ी साहब ने और आशा जी ने आवाज़ दी थी। तो पेश है आपके लिए ये खामोशियां, ये तन्हाइयां।

बहुत ही एक रोमांटिक गाना सुनील दत्त जी पर फिल्माया गया और फिल्म थी ये खामोशियां ये तन्हाइयां। अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है उनकी बहुत ही एक प्यारी फिल्म गजल से, और फिल्म गजल का ये गाना है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, आवाज़ है बेमिसाल रफ़ी साहब की और संगीत है बेमिसाल संगीतकार मदन मोहन जी का, गीत लिखा है वो भी एक बेमिसाल लिरिसिस्ट रहे हैं साहिर लुधियानवी जी। और इस फिल्म के लिए सुनील दत्त जी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया 1965 में, और बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग थी इस फिल्म गजल में। तो पेश है आपके लिए रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

इस फिल्म के लिए, गजल के लिए जो 1964 में बनी थी, उनको नवाजा गया था फिल्म फेयर बेस्ट एक्टिंग अवार्ड से, और इसी तरह से उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टिंग अवार्ड्स से नवाजा गया 1965 में फिल्म खानदान के लिए, और उस समय वो अपने कैरियर के बिल्कुल टॉप पर थे। और इस फिल्म वक्त में एक थोड़ा सीरियस गाना था उनका, वो उसका कुछ छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूँ। और बहुत ही पॉपुलर थी ये फिल्म खानदान, नूतन जी थी इस फिल्म में और इसके गाने भी बहुत ही बेहतरीन थे।

अगले सप्ताह मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, सुरैया जी जिया वही जिन्होंने अनारकली में अपना जलवा दिखाया था, किरण खेर जो आजकल पॉलिटिशियन बन गई हैं, हेमंत कुमार जी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हमें, भारत भूषण जी जो एक ऐसी फिल्मों में आए जो यादगार फिल्में बन गई, मजरूह सुल्तानपुरी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, और के आसिफ जिन्होंने मुगले आजम बनाई, उनके हैं जन्मदिन। और हम आपके लिए अगला गाना जो पेश कर रहे हैं वो है फिल्म वक्त का, जो एक बार फिर उनके शिखर कैरेक्टर के शिखर की फिल्म थी।

बहुत ही प्यारा गाना, और अगला गाना जो है इस गाने के बाद जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, सुनील दत्त जी ने बहुत ही अच्छी एक फिल्म की थी साधना जी के साथ, थी फिल्म वक्त, और उसमें ये गाना, उसे में वैसे तो सारे गाने उसमें बहुत बढ़िया थे, लेकिन ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, रोमांटिक गाना है, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए।

और उनकी एक और फिल्म का एक गाना बहुत ही प्यारा है और उस गाने को भी आपके लिए थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा. और ये बहुत ही प्यारा गाना है फिल्म मिलन का. आप जानते हैं मिलन फिल्म में सुनील दत्त जी और नूतन जी थे और फिल्म अत्यंत ही सफल हुई थी. माफ कीजिए इस गड़बड़ के लिए और चाहता हूँ कि ये गड़बड़ ना हो, तो पेश उम्मीद करता हूँ कि ये गड़बड़ नहीं होगी और हम आपको इस गाने की कुछ हिस्सा ज़रूर सुना पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम रह रहा है. और ये गाना आपको सुनाना ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये गाने का हिस्सा ज़रूर, थोड़ा सा ज़रूर सुनें.

अगले सप्ताह सलमान रश्दी, ओंग सैन सू ची जो बर्मा की लीडर हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लिएंडर पेस जो टेनिस प्लेयर हैं, अन्ना हजारे सोशल एक्टिविस्ट और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं।

और अंतिम गाना जो वो भी मैं आपको पूरा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है और शायद ना ही सुना पाऊं, तो इसलिए यही गाना आपके लिए छोड़ते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूं और उम्मीद करता हूं अगले सप्ताह फिर आपके सामने आपके लिए कार्यक्रम लेकर आऊंगा यहीं 2RRR 88.5 FM पर। नमस्कार।